0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं फास्फोरस तत्व के महत्व के संदर्भ में। पौधों को इस तत्व की जरूरत क्यों होती है और हमारे इन द्वीपों की जलवायु में फास्फोरस उर्वरक के प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं, इस बारे में। फास्फोरस पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है ताकि पौधे सीधे खड़े रह सकें। फसलों में दानों की बनावट के लिए भी फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान है। इस पोषक तत्व में पौधे जल्दी और अच्छी तरह से पकते हैं। हमारे द्वीपों में इस तत्व का मुख्य स्रोत सुपरफास्फेट है। फास्फोरस के दूसरे उर्वरक भी हैं जिनमें फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन वाले पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं, जैसे डाइअमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट आदि। हमारे द्वीपों की जलवायु में तो फास्फोरस उर्वरक प्रबंध का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छी फसल लेने के लिए फास्फोरस तत्व के प्रबंधन की ओर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु में बारिश ज़्यादा होती है। वर्षा अधिक होने के कारण हमारे इन द्वीपों की मिट्टी का चूने का अंश पानी में घुलकर बह जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि मिट्टी अम्लीय हो जाती है। यहाँ की भूमि में फास्फोरस खाद ऐसा रूप धारण कर लेता है कि पौधे उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फास्फोरस के पोषक तत्वों को बाहर से खाद के रूप में डालने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस खाद को डालने में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि भूमि में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इस खाद की उपलब्धता कम हो जाती है, यानी इसकी उपलब्धि में कमी होने का डर रहता है। आमतौर पर फास्फोरस के लिए किसान भाई सुपरफास्फेट खाद का प्रयोग करते हैं, जो कि पानी में घुलनशील होता है। सुपरफास्फेट रासायनिक क्रिया से शीघ्र ही ऐसे रसायन बना लेता है जो कि पौधे ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए जहां तक हो सके सुपरफास्फेट वाली खाद की जगह रॉक फास्फेट वाली खाद या फिर डाइअमोनियम फास्फेट वाली खाद का उपयोग किया जाए। किसान भाइयों, यदि धान की फसल के लिए फास्फेट युक्त खाद का उपयोग

0: करना हो तो रॉक फास्फेट या सुपर फास्फेट को जमीन में कीचड़ बनाने के समय अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। यदि धान के बाद दूसरी फसलें जैसे मक्का, दलहनी और तिलहनी आदि फसलें लेनी हो तो फास्फोरस की खाद को पौधों से 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर भूमि की ऊपरी सतह से 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे डालना चाहिए ताकि इसकी रासायनिक क्रिया को हम कम कर सकें और जड़ इस तत्व को आसानी से ग्रहण कर सके। फास्फोरस तत्व की क्षमता को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका और है, वो ये कि इसे सुपर कंपोस्ट बनाकर डाला जाए। इसके लिए सुपर फास्फेट खाद का एक हिस्सा और गोबर की खाद का 20 हिस्सा लें और इन दोनों को मिलाकर एक गड्ढे में भरकर 2 से 3 महीने तक सड़ने दें। इस बीच यह खाद रासायनिक क्रियाओं के कारण ऐसा रूप ले लेता है जो कि पानी में नहीं घुलता बल्कि अम्ल में धीरे धीरे घुलता है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हमारे इन द्वीपों की अधिकांश मिट्टी अम्लीय है, तो ऐसे में सुपर फास्फेट खाद जब आप डालते हैं सुपर कंपोस्ट बनाकर, तब ये जमीन की अम्ल में धीरे धीरे घुलता है और इस तरह पौधों को धीरे धीरे प्राप्त होता रहता है। फास्फोरस वाली खाद की क्षमता को बढ़ाने का एक और तरीका है, वो ये कि इस खाद को दलहनी फसलों में डाला जाए और इन फसलों के बाद धान की फसल ली जाए, क्योंकि ऐसा करने से फास्फोरस की क्षमता बढ़ जाती है। दलहनी फसलों में फास्फोरस के उपयोग से जड़ों की गांठों में बढ़ोतरी हो जाती है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करती है, जिससे जमीन में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है।
1: अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की।

सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति

0: सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. The Rajya Sabha also passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Secretary, Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. The event is expected to witness participation from BRICS member countries, along with senior policymakers, experts, practitioners, and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी हडबे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल बुधवार 5 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और गुरुवार 6 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। लिटिल अंडमान के लिए एमवी कैंबल बे आज सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर शुक्रवार 7 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और शनिवार 8 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। ननकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए नालंदा जलयान आज सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी गुरुवार 6 तारीख को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

बयानवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी हडबे शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा।

स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटा आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल बुधवार 5 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा।

रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल बुधवार 5 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानीचंगा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदम तला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और गुरुवार 6 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। अब पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार दोस्तों, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज का विषय है सावन। दोस्तों, सावन का महीना अपने साथ लेकर आता है बारिश की फुहारे, ठंडी ठंडी हवाएं, मिट्टी की मनमोहक खुशबू और पेड़ों की झूमती डालियाँ इस मौसम को और भी खूबसूरत बना देती है। सावन सिर्फ बारिश का मौसम नहीं, बल्कि दिल को सुकून और यादों को ताज़ा करने वाला एक प्यारा सा एहसास है।

दोस्तों, सावन का महीना आते ही हर तरफ हरियाली और खुशियों की रौनक छा जाती है। इस मौसम में महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, हाथों में मेहंदी सजाती है और झूलों का आनंद लेती है। तीज और सावन के गीतों के साथ हंसी खुशी का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है।

दोस्तों, सावन की बारिश जब धरती को भिगोती है तो दिल में छुपी यादें भी ताज़ा हो जाती है। इस मौसम की ठंडी फुहारों के साथ किसी अपने की कमी और उसे पाने की चाह और भी गहरी महसूस होने लगती है। प्यार, इंतज़ार और खूबसूरत यादों से भरा यह एहसास हर दिल को छू जाता है।

0: दोस्तों, इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम से इजाजत।
1: इंद्रधनुष।

श्रोता हूँ, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे जिसे प्रस्तुत कर रही थी रितिका। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 320वीं कड़ी।

लंका में भीषण युद्ध छिड़ा है। वानर सेना ने रावण की प्रायः आधी सेना का संहार कर दिया है। रात्रि का आगमन होने पर दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में जय पराजय तथा रणनीतियों की समीक्षा करते हैं। आधा सैन्य बल खोकर रावण चिंतित है। मंत्रणा के समय माल्यवंत रावण को फिर सीख देता है कि वेद पुराणों ने जिन प्रभु का गुण गाया है उनसे विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सका। माल्यवंत उसे स्मरण दिलाता है कि जब से वो सीता को हर लाया है तब से ही भांति भांति के अपशकुन हो रहे हैं, किंतु रावण को अपने वृद्ध नाना की ये सीख नहीं सुहाती। अपमानित कर वो माल्यवंत को सभा से निकाल देता है। रावण पुत्र मेघनाद ने पिता को अपनी दृढ़ता से उत्साहित किया। कल प्रातः देखना मैं क्या करता हूँ, अभी से क्या कहूँ। इस प्रकार पिता पुत्र में मंत्रणा होते रात बीत गई। सवेरा हुआ, वानर सेना ने एक बार फिर दुर्गम गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस ऊपर से बड़े बड़े शिलाखंड तथा अन्य अस्त्र बरसाने लगे। घोर गर्जन तर्जन और वज्र जैसे अस्त्रों से प्रलय मच गई। वानर सेना प्रहार से घायल होती है किंतु मैदान नहीं छोड़ती। मेघनाद ने जब वानर और रीछ सेना द्वारा दुर्ग के घेर लिए जाने का समाचार सुना तो युद्ध घोष करता, डंका बजाता, किले से उतरकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 320वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और रविंद्र साठे व संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। पेश है वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं।

मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर बिजली चमकने व गरज के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 6 अगस्त तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी।

आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत द्वीपों में खेल के संदर्भ में द्वीपों के वरिष्ठ खिलाड़ी श्री जॉन लोबो के संस्मरण आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे मनहर और जगजीत सिंह। सवेरे 9 बजे आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर एम बाला मुरली कृष्णन का कर्नाटक शैली में गायन होगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1342वीं कड़ी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्र गीत 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में पत्रिका कार्यक्रम और विश्व स्तनपान सप्ताह पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर कृषि संबंधी कार्यक्रम विश्व स्तनपान सप्ताह पर चर्चा और गीत भी आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे गुलाम अली। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन 100.9 MHz FM पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा जिसमें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक। और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो दोपहर बाद 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें विश्व स्तनपान सप्ताह पर चर्चा

और एल विलिंगटन द्वारा प्रस्तुत गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 4:30 पर फनकार होंगे तलत अजीज। हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। बहारों की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे 4:45 पर। किसानवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:00, जिसमें संगीता मिंज से बातचीत का विषय रहेगा घरेलू बागवानी और मुर्गी पालन से लाभ। 6:30 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्यामे बहार। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के अंतर्गत देश की शान कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत रात 8:15 पर। 8:30 पर रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान आप सुनेंगे और रात 10:00 विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:00 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन कार्यक्रम और रात 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपादलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 पराजितवान्। असौ 51,64,000 मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपादलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेसदलस्य भीकाभाई रबारी इत्येनं 30,000 पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेसदलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपादलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000 पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधि विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्याम् उज्बेकिस्तानदेशस्य विदेशमन्त्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मन्त्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000 राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां 4थ स्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:01 हुए हैं, लीजिए सुनिए जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 37.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:07 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:44। अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, अब सुनिए एक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के मई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के

अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए, अपने देश, जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

0: को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से न जाने दे, जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए, अपने देश जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, इस ब्रेक के बाद।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से ट्राई माइकॉल के नए संस्करण का शुभारंभ किया गया। विद्युत विभाग ने 20 किलोवाट तक के स्वीकृत भार वाले अनिवार्य प्रमाणित टेस्ट रिपोर्ट के स्थान पर स्वसत्यापित टेस्ट रिपोर्ट की अनुमति दी है। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने संचालन समिति के लिए यूकैम्स पोर्टल पर आवेदन जमा करने की सलाह दी और अंडमान निकोबार एम्पोरियम सागरिका के विभागीय आउटलेट के माध्यम से विपणन सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कल ट्राई माई कॉल के नए संस्करण का शुभारंभ किया। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो दूरसंचार उपभोक्ताओं को वॉइस कॉलिंग अनुभव का सीधा मूल्यांकन करने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। ट्राई माई कॉल एक नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये दूरसंचार उपभोक्ताओं को प्रासंगिक नेटवर्क मापदंडों के साथ साथ अपने वॉइस कॉलिंग अनुभव पर वास्तविक समय में प्रतिक्रिया साझा करने का अधिकार देता है। ये प्लेटफॉर्म प्राधिकरण को वास्तविक उपभोक्ता प्रतिक्रिया के आधार पर दूरसंचार नेटवर्क में अनुभव की गुणवत्ता का आकलन करने में सक्षम बनाकर साक्ष्य आधारित नियामक निरीक्षण को भी मजबूत करता है। ट्राई माई कॉल एप्लीकेशन को एंड्रॉयड फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है। विद्युत विभाग की ओर से सार्वजनिक सेवाओं को सरल बनाने और प्रतिक्रियात्मक देरी को कम करने के उद्देश्य से कम जोखिम वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुधार की शुरुआत की है। प्रशासन ने नियमावली 33 के तहत छूट देते हुए 20 किलोवाट तक के स्वीकृत भार वाले अनिवार्य प्रमाणित टेस्ट रिपोर्ट के स्थान पर स्वसत्यापित टेस्ट रिपोर्ट की अनुमति दी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय नियमावली 2023 के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर और उपराज्यपाल के अनुमोदन से अधिसूचना को प्रशासन के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इस सुधार से बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके साथ ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी लागू विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन जारी रहेगा। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरे द्वीप समूह में मवेशियों के लिए बांझपन निवारण शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से मवेशियों के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करना, गर्भाधान दर को बढ़ाना और डेयरी विकास को बढ़ावा देना है। विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर पशुओं की जाँच कर मल्टी विटामिन इंजेक्शन जैसी दवाएँ दी गईं। राज्य बाल संरक्षण समिति की ओर से न्यू वंडूर बीच पर बाल अधिकार और उत्तरदायित्व विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य बाल संरक्षण समिति के कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा

नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी योजना के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रबंधक ने मिशन वात्सल्य के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और समग्र विकास सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान प्रतिभागियों को किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति की भूमिका पर जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी उद्योगों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं, स्थानीय निकायों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य हितधारकों से संचालन समिति के लिए आवेदन यूनिफाइड कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने को कहा गया है। एएनपीसीसी द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा अन्य लागू पर्यावरण नियमों, अधिनियमों और दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन संचालन समिति के आवेदनों पर विचार और प्रसंस्करण किया जाएगा। समिति ने बिना किसी वैध संचालन समिति के संचालित हो रहे सभी उद्योगों और हितधारकों को जल्द से जल्द यूकैम्स पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा करने और समय पर प्रसंस्करण की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक जानकारी और सहायक दस्तावेज अपलोड करने की सलाह दी है। अधिक जानकारी के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संपर्क किया जा सकता है। अंडमान निकोबार एम्पोरियम सागरिका के विभागीय आउटलेट के माध्यम से विपणन सहायता प्राप्त करने के इच्छुक सभी स्थानीय पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों, एमएसएमई कारीगरों और हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण में लगे व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं। सभी इच्छुक आवेदक स्वीकृति और अंतिम बिक्री मूल्य निर्धारण के लिए 19 अगस्त तक हस्तशिल्प उत्पादों की प्रस्तावित कीमतें, नमूने और प्रत्येक नमूनों की तस्वीरों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र सागरिका के सभी आउटलेटों, सहायक निदेशक कार्यालय और विभाग के सभी विस्तार कार्यालयों में उपलब्ध हैं। पांडुचेरी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विषयों में बची हुई कुछ रिक्त सीटों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली विशेष प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। परीक्षा 9 अगस्त को दो पालियों में वृक्षाबाद स्थित पांडुचेरी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 6 अगस्त से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मत्स्य विभाग ने द्वीप समूह के स्वयं सहायता समूहों से विभाग के मत्स्य संग्रहालय सह जल जीव गृह परिसर में बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बिक्री केंद्र के माध्यम से मत्स्य उत्पादों तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। इच्छुक स्वयं सहायता समूह दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी की अनुशंसा सहित आवेदन 16 अगस्त तक विभाग के सहायक निदेशक के पास जमा कर सकते हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द डेली टेलीग्राम्स ने समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन योजना के तहत कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी और अंडमान क्षेत्र के जल बेसिनों में हाइड्रोकार्बन क्षमता निहित होने के समाचार को अपनी हेडलाइन बनाई है। द्वीप समाचार ने विद्युत विभाग की ओर से कम जोखिम वाले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल करने के समाचार को प्रमुखता दी है। मेरा युवा भारत के तहत रंगत में स्वच्छता अभियान चलाने के समाचार को द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी में जगह मिली है। टीएसजी भास्कर द्वारा सभी सरकारी विभागों में सिटीजन चार्टर को

से लागू करने की मांग के समाचार को इन्फो इंडिया ने, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने भारत के 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की जिम्मेदारी लेने के समाचार को खेल पृष्ठ में प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से ट्राई माई कॉल के नए संस्करण का शुभारंभ किया गया। विद्युत विभाग ने 20 किलोवाट तक के स्वीकृत भार वाले अनिवार्य प्रमाणित टेस्ट रिपोर्ट के स्थान पर स्वसत्यापित टेस्ट रिपोर्ट की अनुमति दी है। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति के संचालन समिति के लिए यूकैम्स पोर्टल पर आवेदन जमा करने की सलाह दी और अंडमान निकोबार एम्पोरियम सागरिका के विभागीय आउटलेट के माध्यम से विपणन सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमारे देश की शांति, सुरक्षा और सम्मान पर कोई चुनौती आती है, तब हर सच्चे भारतीय का दिल अपने वतन के लिए धड़क उठता है। देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों, एकता और आपसी भाईचारे में दिखाई देता है। ऐसे में हर एक देशवासियों का फर्ज बनता है कि हम भी सरफरोशी की तमन्ना दिल में जलाए रखें।

दोस्तों कहते हैं कि जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उससे बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। हमारा भारत वीरों की भूमि है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। हमारा देश भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी शान और हमारा अभिमान है।

0: एफएम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि गिरना भी जरूरी है संभलने के लिए, हारना भी जरूरी है जीतने के लिए। जो चलते हैं आखिरी दम तक, जो चलते रहते हैं आखिरी दम तक, वही इतिहास बनाते हैं दुनिया के लिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ इस सफर में आपकी रेडियो दोस्त शबाना।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने आक्रमण फिल्म का ये गीत सुना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने व संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोता, इस गीत के बाद अब रुख करते हैं खेल जगत कार्यक्रम की ओर।

0: खेल जगत के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आइए खेल जगत के आज के इस अंक में आज हम सुनते हैं द्वीपों में खेलों की स्थिति पर वरिष्ठ खिलाड़ी और बुजुर्ग श्री जॉन लोबो के संस्मरण।
1: हकीकत में कहा जाए तो हम लोग का शुरुआत जो है, पहले जो हमारा शुरुआत जो है स्टूडेंट लाइफ से जो हुआ है, हम लोगों ने हॉकी से शुरू किया। यानी 30 40 41 जब भी जब अंग्रेज़ थे, वो टाइम में भी हम लोगों का जो है हॉकी ज़्यादा जो है, हम लोग सबसे पहला जो चीज़ था हम लोग हॉकी था। हालांकि वो टाइम में फुटबॉल और ये सारा चीज़, क्रिकेट, आपका ये टेनिस, ये सारा भी था। लेकिन हम लोग का जो एज ए स्टूडेंट जो हम लोग थे, बच्चे के टाइप के थे, तो हम लोग जो है हॉकी को सबसे ज़्यादा प्रेम। और बड़े मज़े की बात है कि उस टाइम में जब हम पढ़ते थे, हम लोग को हॉकी का डंडा नहीं मिला करता था। हम लोग अमरूद का डंडा को, हॉकी के डंडा के नमूना का जो होता है वो शेप का, वो डंडा को लेके गेंद की कीमत तो ज़्यादा होती है। वो बोले से अगर हॉकी बॉल लेके अगर खेला जाए तो हम लोग कॉर्क बॉल लेते थे, रबर का जो लेते थे, वो तो टूटा फटने का सवाल नहीं होता। तो हम लोग वो अमरूद का डंडा और या कॉर्क बॉल से जो हम लोग खेलते थे। और हम लोग खेलने का जो स्थान हुआ करता था, वो ये जो आज जो रामकृष्ण मिशन जो वहाँ पे था, वो एकदम फूटा हुआ था, केकड़ा के उस सारे

बिल वगैरह उसके अंदर में रहता था, फिर भी हम लोग उसके अंदर में खेलते थे। और एक जो है जिमखाना, जो जिमखाना क्लब जो है, जो जो जगह में है, वो जगह में जो सीनियर टीम के लोग जो है, जो बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी जो है, वो टाइम में खेला करते थे। इसके बाद जापानी पीरियड के अंदर में तो ये खेल फेल तो वो सब खत्म हो गया था, क्योंकि वो सारा जितना जिमखाना ग्राउंड था तो मोर्चा बन गया था आदमी को छुपने के लिए उनके पास। यही नमूना इनका भी था, क्या बोलते हैं, जहाँ रामकृष्ण मिशन था, यानी सारा जगह आपको मोर्चा ही दिखता था पहले से। इसके बाद जब हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान वो टाइम में भी यहाँ जो अफसर जो जाने से पहले जो भी अंग्रेज अफसर थे, जैसा पैटरसन था, स्टूक्स वगैरह थे, जो यहाँ पे आए थे थोड़े दिन के लिए आए थे, लेकिन ये भी जो है हमेशा जो है ग्राउंड के अंदर जो है हॉकी खेला करते थे। दैट वाज वो जो दे वेयर इट सेल्फ दे वेयर प्लेस। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग का राज आ गया, हिंदुस्तान राज आ गया, उसके बाद में भी हम लोग का जो गेम वो चार गेम वो टाइम में हुआ करता था, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और गोल्फ भी खेला गया था। लेकिन गोल्फ जो जब उनके जाने के बाद जो हमारे पुराने खिलाड़ी थे, उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा, जो गोल्फ और क्रिकेट में ज़्यादा रुचि रखते थे, वो था जगेश्वर लाल, मुरारी लाल और क्या बोलते हैं, जगनारायण लाल, देवर दे इलाइट्स। और टेनिस के अंदर में ये तीनों भी थे, मिस्टर वेंकटराज करके एक अपना अच्छा हेफ्टी, अगर उसका लेफ्ट हैंड वॉली जो है उसको तोड़ने के लिए हाथ झुक जाता था, कृष्णमूर्ति थे, देवर दे स्टार प्लेयर्स ऑन विद दी ब्रिटिशर्स, जिसके साथ वो खेलते थे उनके साथ में वो खेलते थे। कुछ कुछ इंग्लैंड ने यहाँ पे रखे थे, मिस्टर यंग, वर्निंग बेंस, मैकमिलन, और ये जितने जो रह गए थे देवर ऑल प्लेयर्स, हॉकी के प्लेयर थे, माने जाने जाने माने जो है प्लेयर्स वो रहते थे। और इनसे इंसेंटिव होता था कि आदमी जो है जब अफसर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब वो इंटरेस्ट लेता है तो ऑटोमेटिक। और उनका ये था उस ज़माने में जब हम लोग थे, लेबर फोर्स, मेडिकल, फॉरेस्ट, PWD, मर्चेंट, यानी बहुत से क्लब जो है उसमें पार्टिसिपेट किया करते, हॉकी हॉकी को अरे सेम केस विद फुटबॉल। टेनिस के तो थोड़े दिन के बाद तो टेनिस ख़त्म ही हो गया बोले से, उसका तो नहीं, ये दो चीज़ तो होता है। क्रिकेट जो है हर जो है संडे और सैटरडे जो है क्रिकेट खेला जाता, क्लब का सेक्रेटेरिएट क्लब था, पुलिस और ये सब मिलके वो खेला करते थे। इधर में भी ये चीज़ जो है जब हम लोग खेल हुआ करता था तो हम लोग एक दिन पहले छुट्टी दे दिया करते थे लोग, ताकि हम लोग फ्रेश होके जो है ग्राउंड में। और असल तसल जो हम लोग होता था, अभी जैसा मैंने कहा सारे जो क्लब जो वहाँ पे थे वो सब पार्टिसिपेट करते थे, और जो ये ख़ास टसल जो हुआ करता था हम लोग पुलिस और स्कूल के साथ में, हमारा फिर तक हो जाता था कभी कभी, मर्चेंट और पुलिस के साथ में मर्चेंट था, तो इतना ये नहीं रुचि रखते थे भाई। और देखने वाले अब तो ग्राउंड के अगल बगल उन लोगों ने ये क्या बोलता है नारियल पेड़ का जो लंबा लंबा जो है काट के रख दिए थे सारों चारों तरफ, वहाँ पे जाके स्पेक्टेटर्स देख से भरे रहते थे। अब जो रास्ता जो जा रहा है एक अपना सेलुलर तो एक पीपल पेड़ था, वहाँ से बैठ के हजारों आदमी देखते थे, और फिर सड़क के पास में जाके जो है वहाँ से आराम से अपना देखते थे। और यहाँ तक कि बाजी लगता था उस टाइम में कि पुलिस जीतेगा, मर्चेंट जीतेगा कि स्कूल जीतेगा, यहाँ तक के लुची था। और उसको अगर आज के नज़रों में तो अभी मैं क्या कहूँ, वो टाइम में हम लोग 30,000, 35,000, 40,000 आदमी के बीच में कम से कम 3,000 आदमी वो देखते थे, क्या बोलते हैं, खेल देखने को आते थे। आई एम सॉरी, आज जैसी हालत मैं अपने नज़रों से देख रहा हूँ तो आज तो बोले से ये ग्राउंड के अंदर खाली 400 या 500 आदमी दिखते हैं, वेर इज़ द, कहाँ रह गया बोलते से। हम लोग के स्टैंडर्ड के अंदर में यहाँ के आदमी जो है मोहन बगान का उधर में जाके खेले हैं, ध्यानचंद के साथ में उनका साथ वो हुआ सारा चीज़, विजू मास्टर वगैरह, दरियाव सिंह वगैरह सब, दरियाव सिंह इज़ ए प्लेयर, वो जो रिप्रेजेंटेड मोहन बगान, भीमैया ही वॉज ए प्लेयर हु रिप्रेजेंटेड दिस सिंह, राम टपो ही वॉज ए वेरी साउंड सेंटर हाफ जो हुआ करता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और भी लोग वहाँ पे अभी टेक राम है, प्यारे लाल है। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो इसका पार्टिसिपेशन जो है हम लोग के साथ में कुछ भी नहीं, स्टैंडर्ड जो है इतना गिरा जा रहा है अगर देखा जाए। अंडमान का फुटबॉल वगैरह भी जो जो था वो टाइम में भी हम लोग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, और यानी लेवल में हम लोग खेलते थे वो टाइम में, चारों गेम जो है बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिकली सब होता था, बाकायदा उनका प्रोग्राम बनता था। उस टाइम में एक सेंट्रल स्पोर्ट बोर्ड हुआ करता था, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हुआ थे

0: होते मिस्टर आर एन मुखर्जी और उनका सेक्रेटरी थे मिस्टर गोविंद रेड्डी। वो अंडमान क्लब का दूसरा अंडमान क्लब जो है, हम लोग का एक अलग अंडमान क्लब में था, वहाँ पे हर एक चीज़ का उन लोगों ने सुविधा था, एथलेटिक्स हॉकी सब वो बनाते थे, सारा चीज़ ऑर्गेनाइज वो करते थे, हर एक चीज़ का फिक्सचर बनाना, ये बनाना, अंपायर को सेलेक्ट करना, सारा चीज़ जो है उन लोग करते थे। उस टाइम में हम लोगों को जो एथलेटिक्स वगैरह में जो मिलता था, एक किस्म का नीला किस्म का वो सर्टिफिकेट मिलता था, वो अपना क्या बोलते हैं ना, जो ड्राफ्ट पेपर के अंदर में छुपा के जो होता है नीला सर्टिफिकेट, वो होता था, कप्स वगैरह हम लोग को देते थे बोले। तो उस टाइम का जो लुची था, और आज तो भाई मुझे तो कोई ऐसा कोई लुची मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। आज जो मैं देख रहा हूँ, हर आदमी जो है हर गेम के लिए वो शूट कर दिया गया है। इसमें जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो आदमी गेम को समझता है उनको जो इन्वॉल्व करना चाहिए। तो हम लोगों को चाहिए कि पब्लिक पार्टिसिपेशन व्हाट आई मीन इज पब्लिक पार्टिसिपेशन प्लस द ओल्ड। आज तो ओल्ड स्पोर्ट्समैन का तो कोई गिनती नहीं है। जब मैं कॉलेज में था, आई रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज, मैं उसका कैप्टन भी था। फिर उसके बाद मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया 1952 to 54, एक दफ़ा सागर में, एक दफ़ा बनारस में, अब वो टाइम है, यानी वो आदर जो है वो था। फिर कॉलेज में जब मैं उधर में रहने के टाइम में, फॉरेस्ट कॉलेज में जब था, वो टाइम में भी आई वॉज अवार्डेड ए सी जैन जो आके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे ऑलराउंड स्पोर्ट्समैन का पेंटलैंड शील्ड उसको कहते हैं, वो जो है वो मुझे दिया गया था, जो कि हिंदू पेपर में और स्पोर्ट्स वीक में भी आया था, जो मैंने, तो मैं 57 की बात कर रहा हूँ वो टाइम में। तो उस वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के यू हैव टू, यानी आप कुछ शुरू से बच्चों को उस लेवल में उनको ट्रेनिंग देना है, सब कुछ देना है, सारा चीज़ देने के बाद, तो तब तो जो है हम लोग एक लेवल में आ सकते हैं।
1: ये थे हमारे इन द्वीपों के वरिष्ठ खिलाड़ी श्री जॉन लोबो। इसी के साथ खेल जगत का आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत द्वीपों में खेल के संदर्भ में द्वीपों के वरिष्ठ खिलाड़ी श्री जॉन लोबो के संस्मरण सुन रहे थे। अब कार्यक्रम में समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें, आज हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक और बहुमुखी कलाकार किशोर कुमार जी का जन्मदिन है। 4 अगस्त 1929 को जन्मे किशोर कुमार ने अपनी सुरीली आवाज और अनोखे अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज किया। उनके गाए हुए गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और हमेशा यूं ही अमर रहेंगे।

श्रोताओं, अभी आपने जहरीला इंसान फिल्म का ये गीत सुना, बोल मजरूह के थे, व धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। अब आपको सुनवाते हैं सिलसिला फिल्म का गीत किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

0: दोस्तों, जिंदगी की किताब का हर पन्ना नया होगा। आज का संघर्ष कल का फक्र होगा। चलते रहो बिना रुके, क्योंकि एक दिन हर सपना जरूर सच होगा। इस विचार के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
2: राष्ट्रीय

0: लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
1: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई

0: का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
1: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट। प्राधिकरण

0: ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह

0: बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट, डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट्री कमेटी क्रिटिसाइजेज मेटा ओवर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज वीडियो फ्रॉम फेसबुक, सीक्स अपॉलॉजी फ्रॉम सीईओ मार्क जुकरबर्ग। NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
3: ये माफी नामा जुकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जुकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
2: Prime Minister Modi has underlined that talents are honed and refined through continuous effort and dedication. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that today the youth of the country are imbibing these very qualities and illuminating India's name across the world. The National Democratic Alliance or NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, had also participated in the alliance meeting. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. Secretary of Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. This meeting builds upon the outcomes of the first BRICS Anti-Corruption Working Group meeting held virtually in June. More from our correspondent.
4: The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The event is expected to witness participation from BRICS member countries along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. During the meeting, BRICS members will deliberate on strengthening international cooperation for asset recovery, combating cross-border corruption, enhancing transparency and accountability.

इस कार्यक्रम में आज के हमारे फनकार हैं जगजीत सिंह और मनहर। तो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश है जगजीत सिंह की आवाज़ में चंद ग़ज़लें।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे मनहर और जगजीत सिंह। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत कलाकार फिल्म से स्वर दिया है किशोर कुमार ने, बोल इंदिवर के हैं व धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत चितचोर फिल्म से स्वर दिया है येसुदास और हेमलता ने। गीत व संगीत है रविंद्र जैन का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आइए सुनते हैं अवतार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने व संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में गाने और भी हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: सीमा, सीमा, उठो।
2: क्या हुआ?
1: चेकअप के लिए जाना है ना।
2: सोने दो ना।
1: उठो।
2: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा।
3: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द एचआईवी की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को एचआईवी संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
4: समय का मोल,
5: एचआईवी पे कंट्रोल।
3: गर्भावस्था की पहली जांच में ही एचआईवी टेस्ट जरूर कराएं।
0: ब्रेक के बाद तराने सुहाने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है।

जैन ने। श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अंतिम गीत अजनबी फिल्म से। स्वर दिया है किशोर कुमार ने, गीतकार आनंद बख्शी व संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: दादू
1: वो यहीं पर
2: यहीं
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: ओके सैलरी। नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एम बाला मुरली कृष्णा का कर्नाटक शैली में गायन। इसके साथ वायलिन पर ए रामास्वामी तथा मृदंगम पर श्री मुष्णम वी राजा राव ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए एम बाला मुरली कृष्णा का गाया राग कंबोजी, जो आदि ताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में एम बाला मुरली कृष्णा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फिल्म परदेश से। संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने, बोल है आनंद बख्शी की और गायक कलाकार है कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, आदित्य नारायण और साथी।

हमारी अगली पेशकश है फिल्म ए जेंटलमैन से। स्वरों से सजाया है सिद्धार्थ बसरूर और प्रिया सराया ने। धुन तैयार की है सचिन जिगर ने और बोल है प्रिया सराया की।

श्रोताओं आप सुनिए अमित मिश्रा और नीति मोहन की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है लखनऊ सेंट्रल, रचना है आदेश वर्मा की और संगीतबद्ध किया है रोचक कोहली ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक आवश्यक सूचना। क्या आपके जिले में कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्रकृति, सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1

से 31 अगस्त 2026 तक वेव ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर राष्ट्रीय मौलिक वीडियो रील डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग या पोस्टकार्ड अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान कर की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए, अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। ये थी आवश्यक सूचना।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिमरन से। आवाज है शर्माली खोगड़े और दिव्या कुमार की। संगीत निर्देशन है सचिन जिगर और रचना की है वायु ने।

0: हाय, आई एम मनी बेन, शकुंतला कांता की बड़ी बहन। मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी।
1: शादी कर, शादी कर, शादी कर, आपको दी शादी कर।
2: और कुछ काम नहीं है क्या?

अब सुनिए राहत फतेह अली खां की आवाज़ में ये गीत। धुन है सचिन जिगर की, बोल है प्रिया शराया की और फिल्म का नाम है भूमि।

श्रोताओं आइए सुनते हैं जुड़वा 2 फिल्म का ये गीत। स्वर है अनु मलिक और नेहा कक्कर की। संगीत से सजाया है संदीप शिरोडकर ने। रचना है देव कोहली की।

अब लीजिए सुनिए अंकुर तिवारी का लिखा ये गीत, जिसे गाया है रघु दीक्षित ने, संगीत से सजाया है रघु दीक्षित ने, और फिल्म का नाम है शेफ।

श्रोताओं, अब सुनते हैं फितूर फिल्म का ये गीत। स्वर है अरिजीत सिंह की, संगीतबद्ध किया है अमित द्विवेदी ने और बोल है स्वानंद किरकिरे की।

उड़ता पंजाब इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है शाहिद मालिया ने, संगीत है अमित द्विवेदी की, रचनाकार है श्री शिव कुमार बतालवी।

श्रोताओं, चलिए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत। बोल है सुदीप सिंह की, संगीतबद्ध किया है शिवम ने और फिल्म का नाम है मैरी कॉम।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 11 बजे हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1342 कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
3: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
3: जी,
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
3: जी, तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
3: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
3: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
2: जी,
3: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
2: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
3: और तो और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
2: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
3: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
2: जी,
3: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
2: जी,
3: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
2: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
3: जी,
2: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं।

0: सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
1: जी
0: एआई कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही श्रोताओ। दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती है,
0: जी
1: वो चुनौती है नकल करने की प्रवृत्ति।
0: जी
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह एआई से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
0: जी
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

0: गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह एआई से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
1: जी
0: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
1: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि एआई सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं कि एआई का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप एआई से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
0: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि एआई से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
1: जी,
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई पर आश्रित ना हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, एआई का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
0: जी,
1: एआई हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
0: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है
1: बिल्कुल
0: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है,
1: जी,
0: इसी प्रकार एआई भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है। लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
0: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।

0: चलो चलो, चलो,
1: सर के पास चलते हैं।
0: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
2: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। आजा आजा आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
3: सर मैं इशिता।
4: मैं हूँ चेताली।
0: मैं शुभेंदु।
5: और मेरा नाम है इंदु।
6: और मैं सोमेश।
2: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
3: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
2: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
0: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
6: सर फिर क्या होता है?
2: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
5: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
2: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
7: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
3: वाह, कितनी सुंदर बात है।
2: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
8: पौधा।
2: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
8: उल्टा?
2: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
5: फिर क्या हुआ?
2: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
5: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
3: जी सर।
2: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
3: रसपान कैसे करते?
2: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
3: जी सर।
2: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
3: अच्छा अब समझ आया।
2: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
8: जी सर।
4: यहाँ तो कितने सारे पत्ते बीज पौधे के तने रखे हुए हैं।
3: अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
0: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
5: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
6: देखो इतना बड़ा पेड़।
5: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
8: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
4: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
2: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
6: माइक्रोस्कोप।
2: हाँ अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
3: जी सर।
2: हाँ देखो अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो। देखो बेटा देखो इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
5: अरे वाह मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
2: शाबाश।
6: हाँ नलिया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
3: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
2: हाँ आओ आओ।
5: मुझे भी देखना है।
2: देखो क्या दिखाई दिया?
5: इसमें तो बहुत सारी नलियाँ हैं।
2: शाबाश बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
8: पाइप?
2: हाँ यानी जड़ मिट्टी

0: से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुंचते हैं।
1: अच्छा,
2: तो ये बात है।
0: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
3: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
1: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र, तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
3: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
1: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
2: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
3: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
3: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
2: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा, जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
3: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
1: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
1: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना।
1: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना थैंक यू प्लांट,
1: थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
4: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
5: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए?
3: तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: ₹5 दे दिए। लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1342वीं कड़ी सुन रहे थे।

एक आवश्यक सूचना। क्या आपके ज़िले में कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले में संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्रकृति सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पोस्टकार्ड अपलोड करिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। देर तो देर किस बात की, अपने ज़िले में अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने

को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म एतराज से, जिसे लिखा है समीर ने, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, और धुन तैयार की है हेमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म मीनाक्षी से ये गीत, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने, संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

अब सुनिए के और महालक्ष्मी की आवाज़ों में ये गीत, जिसे लिखा है विशाल ददलानी ने, संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने। फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओ।

टैंगो चार्ली इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुना रहे हैं, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने और रचना की है आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं समीर और आतिश कपाड़िया का लिखा ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, धुन तैयार की है अनु मलिक ने और फिल्म का नाम है वक्त।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, चलिए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचारों का प्रसारण, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश

कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम में कुछ गज़लों का। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में आपके नाम फिल्मी पैगाम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9474234000। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9474234000। इस नंबर पर हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल लिख भेजिए, ताकि हम आपको आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा सकें। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला पैगाम हमें आया है इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल और रीता का। ये सुनना चाहते हैं मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं अगली फरमाइश की है सीमा चौहान, रेखा चौहान और सुरेश चौहान ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

एक आवश्यक सूचना। क्या आपके जिले में कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्रकृति, सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेज OTT ऐप के माई वेज सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील्स, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पोस्टकार्ड अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। ये थी एक आवश्यक सूचना। दोस्तों, अब सुनते हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत, जिसे पसंद किया है सरिता, सीता, अनामिका और शिवम ने, डिब्रूगढ़ असम से।

अक्षिता, संजना और अंशिका सुनना चाहते हैं फिल्म विजयपथ का ये गीत। इन्होंने फरमाइश की है दिल्ली सुल्तानपुर से, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, चलिए सुनते हैं हमारी अगली पेशकश, जिसे भेजा है दीपक, पूजा और आयांश वाराणसी से। ये सुनना चाहते हैं दल धड़कन फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आज के आपके नाम फिल्मी पैगाम में बस इतना ही। अब आपके इस रेडियो सखी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया।

0: लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
2: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
3: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे newzoneair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
4: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल

0: मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में।
1: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
2: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
3: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
5: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम्पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।

सकता है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार यह घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर और FM 100.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जन सेवाओं को परसों तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के एक या दो स्थानों पर वर्षा होगी तथा हवाएं 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने की आशंका बताई गई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि अंडमान सागर और उनके आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मछुआरों को यह सलाह दी जाती है कि वे 6 अगस्त तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा को शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सब।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना जान तेरे नाम, बालमा, दीवाना, बाजीगर, हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, दिल, फूल और कांटे और चांदनी, इस फिल्म के गीत।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका खास संगीत कार्यक्रम यूं ही गाते रहो, जहां हर गीत अपने साथ यादों की एक नई कहानी लेकर आता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खुशनुमा नगमे, जिसे सुनते ही आपके दिल में प्यार और खुशियां दोनों ही खिल उठते हैं। दोस्तों, कहते हैं भगवान हर जगह तो नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने माँ और पिता का रूप बनाया। उनका प्यार, उनका त्याग और उनकी दुआएं ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसी खूबसूरती एहसास को शब्द देता है ये गीत।

दोस्तों पिता परिवार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। पापा के बिना घर अधूरा सा होता है। पापा के कदमों में ही आहट घर की रौनक लौट आती है। बच्चों के दिल में हर पल बस यही दुआ होती है, पापा हमारे बीच जल्दी आए।

दोस्तों कहते हैं दुनिया में रिश्ते अनमोल होते हैं, लेकिन पिता का रिश्ता उन सभी रिश्तों में सबसे खास होता है। उनकी डांट में चिंता होती है, उनकी खामोशी में अपनापन और उनकी मेहनत में पूरे परिवार की खुशियां छिपी होती है।

चांद की चांदनी हो या तारों की जगमगाहट, हर बच्चे की दुनिया में एक ऐसा सितारा ज़रूर होता है जो उसे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, और वो है उनके पापा। यही मासूम एहसास को समेटे प्यारा सा ये गीत हमें अपने पिता के प्यार, सुरक्षा और अपनापन की याद दिलाता है।

दोस्तों, हर पिता की आंखों में अपने बच्चों के लिए ढेरों सपने होते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, अपने हुनर से पहचाना जाए और परिवार का नाम रोशन करे। यही उम्मीद, यही विश्वास और यही प्यार भरा सदाबहार गीत के साथ सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजे हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती एफएम के साथ। अब अपनी इस रेडियो सखी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: सेल्यूलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी थैंक यू।
1: तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके, और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले। तो
2: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो LPs और CDs जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊंगी उसको लेकर।
1: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थी तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आई, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड दिखा।
2: हाँ जी,
1: है ना। फिर 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड दिखा, फिल्म थी यास्मीन।
2: वाओ,
1: 1955।
2: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
1: जी,
2: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
1: जी,
2: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ।
1: वाह वाह वाह,
2: क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
1: जी जी,
2: हम लोग मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, केन्या में थे,

0: इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग
1: वाह वाह
0: बाहर देशों
1: वाह,
0: में, उसके बाद हम दिल्ली आए। और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये
1: वाह
0: सब
1: वाह,
0: जो है मैंने दिल्ली में
1: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है
0: किया।
1: आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
0: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहाँ से मुझे हर चीज़ जो शिक्षा है, वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हाफिज़ अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब
1: बिल्कुल
0: चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री
1: बिल्कुल
0: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
1: वो तो मकसद ही है सोसाइटी ऑफ
0: बिल्कुल
1: इंडियन क्लासिक
0: कि
1: म्यूजिक, वो युवाओं के
0: एजुकेशन,
1: बीच।
0: हाँ
1: हाँ
0: एजुकेशन जो है, आप उनको कॉनोसियर्स बनाएं, हर कोई जो है वो, ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए,
1: जी
0: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णा मूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
1: क्या बात है,
0: वो एजुकेशन जो है मैं अपनी बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो
1: कल्चरल
0: विंटर्स,
1: हब।
0: बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब,
1: त्रिवेणी
0: त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है,
1: बिल्कुल
0: ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स, जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया, कि वहाँ आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डेसिका से लेकर ब्रेसों, सब एलन दलों की फिल्में, सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा, मतलब आंद्रे वायदा, किशलोवस्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बंबई जब आई, मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या
1: क्या
0: करूं।
1: बात है, बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने दिखाया,
0: हाँ
1: तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था, घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी, वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्ड कोर कॉरपोरेट गए थे, और इंजीनियर और कॉरपोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी, तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और

0: किसी के घर, मतलब जहाँ कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी। और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि रे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता
1: हाँ,
0: चला गया। सुनते हैं।
1: क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था और
0: लिखा
1: जयदेव की तर्ज थी। सुनते
0: जी
1: हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी। और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही, उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: हाँ, बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि

0: तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है। तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज्ड टू यू नो सी दैट
1: उस समय,
0: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आपका क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैंप रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूं। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
0: बिल्कुल। तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
1: वाह वाह वाह,
0: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में, हाँ

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाई जाए।
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोग के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेज नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा?
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे और दुर्गा पूजा।
0: वाह वाह, ये तो बहुत महत्व।
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में। बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे एक करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी?
1: जी। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो NSD के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
0: वाह,
1: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया।
0: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स से जा रही थी,
1: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई।
0: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
1: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा।
1: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में US में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
0: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे? टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा,
1: उनको मतलब हार्ट अटैक आया। और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक।
0: तब तक तो काम पूरा।
1: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप। तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे।
0: पैसे तो वहाँ ऑलरेडी आ रहे थे।
1: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई। कहती एक बिगड़ गई है, दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे।
0: तो वो सीधी राह पर चली गई।
1: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
0: क्या बात है, हाँ, क्या बात है। हाँ,
1: वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेतरम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और कला क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी और मतलब, लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं।
0: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
1: और फिर NSD के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम MBA कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो

0: ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी। फिर पापा को मैं कहती थी, अरे मां पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। जूडी डेंच, एन हैथवे, इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी MBA किया जाए, क्योंकि पापा, हाँ पापा ने ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली, तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए। कहते नहीं नहीं नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
1: आप यहाँ पढ़ो मत।
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक देके अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वाज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे MBA करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो।
1: फिर मामला टल गया।
0: फिर हाँ, परमानेंटली मामला टल गया।
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ, ऐसा, दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स।
1: राइट।
0: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई। अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं।
1: बट उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट।
0: फुल प्लेट। अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ, जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है।
1: और ये बन गई।
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बना दो। और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय।
1: हाँ,
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
1: क्या बात है। तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे क्या काम करता है।
0: एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है। नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में। मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स दी एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
1: वाह, क्या प्यारी बात।
0: तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हार ता हबे।
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था।
1: क्या बात है, क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते,
0: जा हार ता हबे।
1: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है। यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
0: हाँ जी,
1: तो आप, एक सजेशन करता
0: आप, हाँ बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे,
1: हाँ,
0: अलाउद्दीन खान साहब का
1: वो बजा सकते हैं,
0: या
1: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
0: बिल्कुल,
1: ये सुनते हैं। ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं। आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं। पीछे की तरफ केमिस्ट्री है।
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है।
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन। और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज so inspired by the cinema that I was watching. और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया।
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी, और हमारी जो टीचर हुआ करती थी जो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो एफटीआईआई में भी पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी। सो आई वॉज सो मच इन लव विथ, और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में। फिलिप जॉन्ते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था।
0: बिल्कुल।
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं। और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए, तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिज़ाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी।

0: लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो।
1: क्या बात।
0: डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो। तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
1: और
0: और
1: एक्टिंग की तरफ आगे
0: एक्टिंग
1: बढ़ती गई।
0: के
1: एनएस जी, आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैचमेट्स?
0: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी
1: जी।
0: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था, और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे,
1: वाह वाह।
0: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओ माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
1: बिल्कुल।
0: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है, शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं, जब बड़े मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस, और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट देन लाइक आई सेड कि आई थिंक नो पेन नो गेन।
1: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी हुई। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
0: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी
1: इससे पहले बना चुकी
0: इससे
1: थी आप
0: पहले।
1: जी।
0: हाँ, और
1: नवाज थे उसमें?
0: नवाज नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है। तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में। उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे, नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट।
1: क्या हुआ था आपके साथ
0: फिर
1: रोम में?
0: मतलब सुपर
1: वेनिस
0: नेचुरल
1: में?
0: स्टोरी थी।
1: सुपर नेचुरल।
0: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर, देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी।
1: राइट।
0: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। उसी ने मुझ में ये कीड़ा
1: डाल दिया।
0: इंसर्ट किया।
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
0: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थीं?
0: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ईरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई, सब कुछ बंद हो गया। लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडन्ट डू एनी थिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम,
1: अभी
0: पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैटाटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकेंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया, वहाँ मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर
1: वाह।
0: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला। केरला मैंने बताया, केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने US प्रीमियर की उस फिल्म की।
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया।

0: क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
1: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया,
0: हाँ,
1: बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने। इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था। मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज की तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहाँ फुल्ली आ गया है।
1: कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको। और उस हिसाब से आप, तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें, क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बिकॉज
1: बिल्कुल।
0: इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेट कीपर्स हैं जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम,

0: एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी
0: है।
1: जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बंबई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चर की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म।
0: ऑडिशन से मिली थी?
1: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
0: ओहो,
1: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ये ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
0: क्या बात है।
1: और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
0: यू हैव टू सिंग।
1: ओके।

0: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
1: हाँ
0: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

शाम की दहलीज पर बैठे हैं तेरे इंतजार में, एक दिया जलता है बुझता है तेरे इंतजार में। पूछती हैं मुझसे अक्सर ये हवाएं तेरा हाल, रास्ते भी थक गए हैं तेरे इंतजार में। आओ आ भी जाओ कि हमने तो जिंदगी लिख दी तेरे इंतजार में। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती।

पलकों की मुडेरों पे उतर आते हैं चुपचाप, गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते। जब तक तो था उससे बहुत गहरा था रिश्ता, टूटा है तो अब टुकड़े संभाले नहीं जाते। कुछ लोगों की हर दौर में पड़ती है जरूरत, कुछ लोग कभी दिल से निकाले नहीं जाते।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। जब दूर तक चलो किसी के साथ तो फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। टूटा हुआ आईना भी किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या। ये जो सुन रहे हो तुम इतने गौर से मेरी बातें फरियादे, तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है क्या।
1: तुझे

कभी ये दुआ कि वो मेरा है, फकत मेरा, कभी ये डर कि वो मुझसे, कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये इल्तिजा के उसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियां, कभी ये खौफ के वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना के बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर के उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजिर उसका, कभी ये वहम के वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू के वो जो मांगे मिल जाए, कभी ये वसवसा के उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं।

मायूस करने का, मगर जाने दो, छोड़ो भी, अपने किस्मत में चाहत नहीं शायद, फकत इतना बता दो कि मोहब्बत हमने की थी ना।

मुझे ये खुशगुमानी थी कि तुम मेरी सदाओं पर किसी लम्हा पलट कर, किसी पल तो मुड़कर देखोगे, बिल आखिर लौट आओगे। मगर कुछ इस तरह तुमने हुनर सीखा नजर अंदाज करने का, मुझसे किनारा करने का, मुझे

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

0: तराने नए पुराने।
1: विविध भारती पर कार्यक्रम तराने नए पुराने लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: जूली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी की बोल, राजेश रोशन का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय,
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

किशोर कुमार की आवाज में नमक हराम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे,
2: विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के पहले भाग में हमने किशोर कुमार पर केंद्रित गीत आपको सुनवाए और

शान की आवाज में आप सुन रहे थे प्यार में कभी कभी फिल्म से ये गीत। विशाल राज कौशल ने इसे लिखा, विशाल सिराज सम्राट का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, तराने नए पुराने।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे तेरे नाम फिल्म का ये गीत, समीर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन विविध भारती, कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: कलयुग फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

थाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, थाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर

0: देवदास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। पंडित बिरजू महाराज, कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित की आवाजें, पंडित बिरजू महाराज के बोल और उन्हीं का संगीत। इसके साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

शाम 6:35 से संध्या रंजन कार्यक्रम सुनेगा और 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वर्षा चौमासा। आज सुनिए चौथी कड़ी, कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल, प्रस्तुति कांचन प्रकाश, संगीत की। शाम 7 से जय माला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। ये न थी हमारी किस्मत, ये झलकी सुन सकते हैं रात 8 से हवा महल के अंतर्गत। लेखन सत्यदेव नारायण सिन्हा का, निर्देशन सीताराम यादव का। 8:15 से नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक और समाचार संध्या 8:45 से रात 9 से कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार रात 9:30 से सुन सकते हैं। कार्यक्रम आज केंद्रित है पार्श्व गायक फिल्मकार किशोर कुमार पर। छाया गीत 10 से सुनिएगा, 10:30 से ढलती जाए रात, और 11 से सुनिए रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

अब आपको बता देते हैं कल यानी 5 अगस्त 2026 के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:05 से वंदनवार, 6:30 से झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रमों का विवरण सुनेंगे। 6:35 से श्री रामचरितमानस में कल सुनिएगा 271वां भाग। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कल सुनिएगा इसकी 5वीं कड़ी। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत, हम हैं राही प्यार के कार्यक्रम सुनिएगा 7:30 से। और सुबह 8 बजे से समाचार प्रभात, 8:15 से त्रिवेणी, 8:30 से चित्रलोक और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री काजोल पर। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी सुन सकते हैं, ये पुनः प्रसारण है। 11 बजे से रंग तरंग, 12 बजे से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल सुरीला सफर कार्यक्रम सुन सकते हैं दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी और 2:15 से दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का समय 2:30 का, 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम सुनेगा और शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में सुनिए लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण, 5:30 से तराने नए पुराने और 6 बजे से हिंदी में समाचार। से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 से संध्या रंजन कार्यक्रम सुन सकते हैं। कल शाम 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वर्षा चौमासा की 5वीं कड़ी सुनिएगा। कलाकार गायिका शुभा मुद्गल है और शाम 7 बजे जयमाला। कल शाम 7:45 पे इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। कल यानी 5 अगस्त को रात 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी चुपके चुपके, लेखन आर के शर्मा का, निर्देशन नीलम चोपड़ा का, 8:15 से चित्रलोक। नौ बजे से आपके लिए आज के फनकार कार्यक्रम कल केंद्रित होगा अभिनेत्री काजोल पर, सुन सकते हैं सुबह रात्रि 9:30 से। छाया गीत 10 बजे से और 10:30 से ढलती जाए रात। ये थे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम संध्या रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में हम दोनों फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल उद्यानवी के बोल, जयदेव का संगीत, कार्यक्रम संध्या रंजन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। फिल्म गोपी का ये भजन सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की ये चौथी कड़ी है। शुभा जी हमारे साथ हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मेरी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और समग्र श्रोताओं की ओर से, आज हम किस राग का, हम मतलब मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ इसलिए हम, बाकी सब तो आप ही बता रही हैं और आप ही जानती भी हैं और समझाएंगी भी हमें, किस राग का चयन कर रहे हैं?
1: अब तक हमने राग शुद्ध मल्हार और मेघ और गौड़ मल्हार के बारे में कुछ चर्चा की, लेकिन एक एक बहुत ही बहुचर्चित, लोकप्रिय, जाना माना एक मल्हार का प्रकार है जो जिसके विषय में हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शायद यही रागांग है, उसे मियां मल्हार कहा जाता है।
0: जी, मियां की मल्हार भी कहते हैं।
1: मियां की मल्हार भी कहते हैं और कहा जाता है कि तानसेन जी द्वारा ये रचित
0: मियां तानसेन जी रचना।
1: जी, तो मियां मल्हार के विषय में हमने कुछ नहीं कहा, हालांकि ये बहुत ही लोकप्रिय है और इसमें इसकी विशेषता जो है, मतलब ऐसा लगता है कई बार कि इसमें जो दोनों निषाद लगते हैं वो ही मल्हार का एक प्रतीक बन गए हैं। यदि किसी ने न सीखा हो या केवल सुन सुन के जानकारी हासिल की हो तो शुद्ध मल्हार के जगह ये भी मान सकते हैं कि अगर दोनों निषाद लगाने का जो एक विशेष इसमें जो स्वर संगति है वही शायद मल्हार का प्रतीक बन जाता।
0: जी, और वही मल्हार का रूप है।
1: जी,
0: असली रूप है।
1: जी, तो काफी थाट जन्य ये राग है और इसमें कहा जाता है कि मल्हार का एक अंश मिलता है और कान्हड़ा का भी मिश्रण इसमें मिलता है और फिर तो वो जो दोनों निषाद लगाने की एक विशेष परंपरा है वो भी उसमें मिलती है।
0: जी,
1: इसमें भी मैंने आपके लिए दो रचनाएं चुनी हैं जिनका साहित्य मुझे बेहद पसंद है।
0: लेकिन शुभा जी, थोड़ा सा राग, ये जो मियां मल्हार या मियां की मल्हार है उसका थोड़ा चलन भी तो आप बताइए, समझाइए, ताकि आप जिससे कह रही हैं कि ये काफी थाट का राग है और शुद्ध मल्हार के बारे में आपने कहा था कि वो बिलावल थाट का
1: जी,
0: है, तो ये भी तो कुछ फर्क है
1: जी,
0: और ये फर्क हमारे श्रोता भी समझे
1: जी
0: तो
1: जरूर वो गाने से ही पता चल जाएगा। तो इसका जो एक मुख्य इसका चलन है वो इस प्रकार है।

0: वाह वाह, ये आरोह अवरोह सुनकर मुझे, चूंकि एक सर्वसामान्य श्रोता के मन की बात है जो मेरे मन की बात है, बोल रे पपीहरा जो गाना है
1: जी
0: वो मुझे याद आया,
1: जी
0: वो इसी राग में निबद्ध
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: सही
0: हम
1: कहा।
0: अभी आपकी बंदिशें सुनेंगे, जो आपने जिक्र किया कि दो बंदिशें सुनाऊंगी।
1: तो ये दोनों ही बंदिशें पंडित राम आश्रय झा जी की हैं,
0: जी
1: और जो धीमे तीन ताल में बंदिश है उसके बोल इस प्रकार हैं। तू क्यों मान करे रे बदरा, तो नायिका पूछ रही है बादल से कि किस बात का अभिमान है तुझे। तू क्यों मान करे रे बदरा, मोह बिरहीन नैन के आगे, मतलब तू देख रहा है कि मेरे बिरही नैन कितना बरस रहे हैं फिर भी तू अभिमान कर रहा है, और क्या जरूरत है तुझे अभी इतना मान करने की। तू बरसे रुत पावस आए, तू तो तभी बरसता है जब पावस ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है। राम रंग मेरो नैन दिन रैन झरे।
0: वाह वाह वाह वाह, हाँ
1: तो वियोग की का
0: जी।

0: भेदते हैं, और उसमें कितना कितनी सुंदर उलाहना दी है बादल को कि किस बात का तुम्हें अभिमान है, मेरे नैन तो दिन रैन झरते हैं, तुम तो केवल इस वर्षा ऋतु में बरसते हो।
1: जी, आपने बात करते हुए कहा कि धीमे धीमे तीन ताल में,
0: जी
1: तो वो कैसा होगा धीमा तीन ताल? मतलब
0: जी, गति का एक विशेष संबंध है संगीत के साथ, और उससे मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि यही बंदिश यदि हम बढ़ी लय में या तेज गा दें तो उसमें जो भाव है वो शायद एकदम नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो अब आप को हम बताते हैं कि देखिए गति से क्या क्या मजा भी आ सकता है और क्या कहर भी ढा सकता है।

0: अब दूसरी बंदिश के बारे में।
1: जी ये एक ताल में निबद्ध है, 12 मात्रा का ये ताल है और मियां मल्हार में तो स्वाभाविक है कि उसी में गुरुजी ने बनाई है ये रचना। और बोल इस प्रकार हैं, बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी से जरिया। के जो शब्द हैं, जो साहित्य है, उनको एक ही ढंग से लगाना पड़ता है। बाद में आप उसका उसकी बढ़त कर सकते हैं, लेकिन उसे सजाने के लिए ताकि वो गहने की तरह गढ़ा हुआ लगे, तो वो शब्द आप देखेंगे कि कैसे वो गढ़े गए हैं। बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी से जरिया। बिजली देख के जो नायिका है वो चौंक गई सेज से। पवन की झकझोर बूंद झमाझम की शोर, राम रंग अटा झरे।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

0: श्रोताओं, अब हम आपको आज के इस सभा के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। दिल ने फिर याद किया, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में देश की शान कार्यक्रम केंद्रित होगा सुर सरताज किशोर कुमार पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 8:15 पर। रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। ये तो थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम। श्रोताओं, कल सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में डॉक्टर विनीता सहजू के साथ ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा विश्व स्तनपान सप्ताह और कुछ फिल्मी गीत। सुबह 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
4: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
5: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
2: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
6: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
2: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
7: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
2: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
8: जन पॉलिसी जन कैयल।
2: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद संसद ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल हुआ शून्य।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दो दिवसीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन हुआ सक्रिय और कृषि निदेशालय ने संविदा आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई। लेखाकार और सचिवीय सहायक पदों के लिए साक्षात्कार सूची जारी।

सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। राज्यसभा की स्वीकृति के साथ ही संसद ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। विधेयक में प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना पंजीयक को उसके घटित होने के एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है तो जन्म या मृत्यु की प्रामाणिकता के सत्यापन के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से उसका पंजीकरण किया जा सकेगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के व्यापार और नशे के दुरुपयोग की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए ब्यूरो संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के समन्वय से युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए खुफिया जानकारी आधारित अभियान और निवारक उपाय कर रहा है। श्री राय ने कहा कि भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के दुरुपयोग पर नियंत्रण के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य स्तरीय मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 4 स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र तंत्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग, सीमा सुरक्षा बल और राज्य मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल के साथ नियमित रूप से समन्वय कर संयुक्त अभियान चला रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। यह योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छत पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, उपराष्ट्रपति दौरा और साक्षात्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के आगामी दौरे के मद्देनजर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपराष्ट्रपति 8 और 9 अगस्त को द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति डॉ BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि

क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि दलहन और तिलहन के अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए किसानों को विभिन्न फसल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि अब आय के स्रोत पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर दुग्ध उत्पादन, गन्ना और मक्का उत्पादन तक विस्तारित हो गए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हुई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद मिलती है। कृषि निदेशालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संविदा आधार पर लेखाकार और सचिवीय सहायक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों

किसानों को 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद मिलती है। कृषि निदेशालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संविदा आधार पर लेखाकार और सचिवीय सहायक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की साक्षात्कार सूची जारी कर दी है। साक्षात्कार 10 अगस्त को सुबह 10 बजे हैडो स्थित कृषि निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी। लेखाकार पद और सचिवीय सहायक पद के लिए 10-10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। श्री विजयपुरम दूरदर्शन केंद्र की ओर से कल शाम 5:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय है पालतू पशुओं में प्रमुख बीमारियां, रोकथाम और उपचार। कार्यक्रम में गारचरामा पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ वी सुब्रमण्यन विशेषज्ञ के रूप में मौजूद रहेंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 2447 45 और 2456 62 पर संपर्क कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चेन्नई मुख्यालय द्वारा दक्षिण भारतीय क्षेत्र के अधीन भारतीय सेना की ओर से चलाए जा रहे अभियान दिल्ली टू द्वीप 2.0 के तहत द्वीप समूह में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार इस रैली में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों से प्रवेश पत्र www.joinindianarmy.nic.in से डाउनलोड करने को कहा गया है। यह भर्ती रैली 23 से 26 अगस्त तक नेताजी स्टेडियम में होगी। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायबंदर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय में अतिथि प्रवक्ता का पैनल तैयार किया जाएगा। इसके लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यकता के अनुसार मानदेय पर स्नातक कक्षाओं में अध्यापन कार्य के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर 12 अगस्त तक प्राचार्य कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद संसद ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल हुआ शून्य। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 2 दिवसीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन हुआ सक्रिय। और कृषि निदेशालय ने संविदा आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई। लेखाकार और सचिवीय सहायक पदों के लिए साक्षात्कार सूची जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

डॉन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आप सुन रहे कार्यक्रम जयमाला और वक्त है छोटे संतराल का।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोलों के साथ शोले फिल्म के इस गीत में आवाजें किशोर कुमार और मन्ना डे की। जयमाला कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभिलाषा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम जयमाला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी लौटते हैं।

0: रे के आगे क्या है?
1: गा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
2: ये बात है
0: तो माँ। चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: सारे गामा वन टू थ्री फोर
1: सारे गामा मा सारे गांगा सारे मा
0: मांगा रेसा
1: सारे गामा मा सारे गांगा सारे मा
0: मांगा रेसा
1: मांगा रेसा
0: मांगा रेसा
1: मांगा रेसा
0: मांगा रेसा
1: मांगा रेसा
0: मांगा रेसा।
2: मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजों में चुपके चुपके फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम जयमाला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपको याद दिला दें कि रोजाना रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम आप सुनते हैं विविध भारती पर, और आज आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत झलकी ये न थी हमारी किस्मत, जिसका लेखन किया है सत्यदेव नारायण सिन्हा ने और निर्देशन है सीताराम यादव का। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अंदाज फिल्म से एक गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और आपको ये बता दें कि आज फिल्मकार, गायक और अभिनेता किशोर कुमार का जन्मदिन है। इसी पल को याद करने के लिए हम आज उन्हीं के चुनिंदा गीत आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम जयमाला के अंतर्गत। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कल आज और कल फिल्म में के इस गीत में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। हसरत जयपुरी के बोलशंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम समाप्त होता है।

एल्बम चुराके, इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे विलेन और कनिका कपूर की आवाजों में, और इसे लिखा और संगीतबद्ध किया विलेन ने। पॉप एक्सप्रेस में आप सुनते हैं एल्बम्स के गीत।

तेरा सुरूर। इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया और कनिका कपूर की आवाजों में, समीर अंजान के बोल हिमेश रेशमिया का संगीत। कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं द गर्ल ऑन ट्रेन, द गर्ल ऑन द ट्रेन। इस एल्बम से नेहा कक्कड़ की आवाज में ये गीत, कुमार ने इसे लिखा, विपिन पटवा का संगीत।

एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे नेहा कक्कड़ की आवाज में, कुमार के बोल, विपिन पटवा का संगीत। और पॉप एक्सप्रेस में अगला जो गीत है वो हम आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज में। विशाल ददलानी ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत, पॉपकॉर्न खाओ इस एल्बम से।

हवा महल इस कार्यक्रम में आज आपके लिए लेकर आए हैं झलकी। ये न थी हमारी किस्मत। लेखक सत्यदेव नारायण सिन्हा, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता सीताराम यादव।

0: अजी सुनते हो, मैंने कहा आज रविवार है।
1: जानता हूँ प्रिय कि है आज रविवार, उस दिन तुम कुछ ज्यादा ही करती हो प्यार।
0: अच्छा भला वो क्यों?
1: जिससे दिखाऊं मैं पिक्चर कोई नहीं, या फिर ले जाऊं तुम्हें हाट बाजार।

0: आज के दिन रहती हो तुम ज्यादा उदार।
1: अच्छा अच्छा, अब आप अपनी ये कविता छोड़िए, आज मैं उदार नहीं बिल्कुल उधार हूँ जनाब।
0: वाह उदार, अरे वाह उदार, क्या बात है यार, तुमसे करता है प्यार है प्रिय बार बार, क्योंकि प्रिय तुम तो हो बहुत उदार और देती रहती हो अक्सर मुझको उदार।
1: बस बस श्रीमान, अब बहुत हो गया। सुनिए, परसों आपने कहा था कि इस रविवार को खाना मैं पकाऊंगा और अपनी पाक कला का जौहर तुम्हें दिखाऊंगा, तो जल्दी से आज किचन में पहुंच जाइए और जरा जल्दी से खाना बना डालिए, तब तक मैं ये फिल्मी पत्रिका पढ़ती हूँ।
0: प्रिय तुमने गजब किया, जो मेरे वादे पे इतवार किया, हे प्रभु क्या इसलिए आपने मुझे ये इतवार दिया।
1: देखिए देखिए, अब आप किसी तरह बच नहीं सकते, बहानेबाजी करने से काम नहीं चलने वाला, वायदे के अनुसार खाना तो आज आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे
0: हाँ।

0: अब आए रास्ते पर, बस अब सीधे चले जाइए, किचन का रास्ता बिल्कुल सीधा है।
1: ज्यादा हूँ प्रिय, जल्दी की क्या बात, अभी तो दिन निकला है, हाय हुई नहीं रात।
0: ये अखबार लेकर किचन में नहीं जाया जाता जनाब, जाइए भी। पड़ोस में शर्मा जी हर रविवार को खाना बनाते हैं और आपको आज एक बार खाना बनाना पड़ रहा है तो उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं। शर्मा जी की पत्नी रविवार को ठाट से टेलीविजन देखा करती है और समय पर चाय नाश्ता उन्हें ड्राइंग रूम में शर्मा जी पहुंचाया करते हैं। मेरे ऐसे नसीब कहाँ।
1: देखो प्रिय, तुम
0: देखो जी, मुझे ये बार बार प्रिय प्रिय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ
1: देती हो अगर मुझे वार्निंग, तब क्या मैं तुमको कहूँ हाय डार्लिंग।
0: कुछ भी कहिए पर ये प्रिय प्रिय की रट छोड़िए, फिर चाहे डार्लिंग कहिए या।
1: मैं सरकारी कर्मचारी ही नहीं, हिंदी का कवि हूँ मैं, गगन का रवि हूँ मैं।
0: ओफो, भगवान बचाए ऐसे सड़क छाप कवि से। अरे बाबा, मैं समझ गई कि आप क्या हैं। मैं तो आपकी इस निगोड़ी कविता के मारे परेशान हो गई हूँ।
1: अरे ये क्या कहती हो मेरी रानी, सुनकर आंखों में भर आता पानी, हाय हाय मेरी कदर किसी ने ना जानी।
0: ओफो, आप सिर्फ बातें बनाते रहेंगे या खाना भी बनाएंगे? अब आप किचन में जाइए, जाइए ना प्लीज।
1: जाता हूँ, अभी खाना बनाता हूँ, पर जाने से पहले एक कविता सुनाता हूँ। हाँ तो अर्ज किया है, दिमाग से कर्ज लिया है, बस यूँ समझिए अपना फर्ज किया है, मानो मरीज से मर्ज लिया है।
0: हे भगवान, लगता है आप खाना नहीं बनाएंगे, बहाने बना रहे हैं। पहले आप किचन में जाकर खाना बनाइए, फिर बाद में अपनी कविता सुनाइएगा।
1: जाता हूँ प्रिय, जाता हूँ।
0: फिर प्रिय का भूत सवार हो गया आप पर।
1: अरे किस अशुभ चीज का नाम लिया तुमने, अब जाता हूँ किचन की ओर। होशियार, खबरदार, कवि कोमल रहे हैं पधार, जिनके आने से किचन में आई है बहार।
0: हे भगवान, आप चुपचाप नहीं रहेंगे?
1: हाँ, किचन की है क्या अजब छटा, कहीं लोटा तो कहीं थाली, कहीं बेलन तो कहीं। देखो मेरी सजनी, कौन आया है असमय।
0: मैं देखती हूँ, आप किचन में अपना काम शुरू कीजिए, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं।
2: हाय दीदी,
0: जाग गई ना? अरे रेणु, कैसे आई अचानक?
2: सोचा आज रविवार है, चलो दीदी और जीजा जी से मिल ले। जीजा जी कहाँ हैं?
0: किचन में है।
2: किचन में? ये सूरज आज पश्चिम से कैसे उगा?
0: उगा नहीं है, उगाया गया है।
2: अच्छा।
0: तुम्हारे जीजा जी ने वादा किया था इतवार को खाना बनाने का, वही वादा निभा रहे हैं।
2: अच्छा, चलो तो देखो जरा।
1: अरे इश्क में गोल निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के।
2: वाह जीजा जी, आदमी तो आप आज भी काम के। तभी ना दीदी को छुट्टी के दिन खाना बनाकर खिलाने की तैयारी में लगे हैं।
1: अरे रेनु रेनु रेनु, अरे तुम कब आई?
2: बस अभी आ ही रही हूँ, बीवी ने बताया कि आज आप किचन में अपना जौहर दिखा रहे हैं, तो यहाँ चली आई।
1: अच्छा किया जो तुम आई, अरे तुम आई मेरे घर, खुदा की कुदरत है, कभी

0: देखते हैं।
1: वाह जीजा जी वाह, आपकी शायरी का जवाब दे। मगर जनाब, शायरी या कविता कामिनी का आह्वान किचन किंग बनकर नहीं किया जा सकता।
0: किया जा सकता है मेरी रेनु, आज तो किचन में मुझे एक से एक कविता की पंक्तियां जिह्वा पर आ रही है। कहो तो उठाकर बाल से लिख दूं, झुकाकर डाल से लिख दूं, कहो तो मानस कर जाकर कमल के फूल के ऊपर तुम्हारा नाम प्यारा है, महज इस ख्याल से लिख दूं। ताली ताली है।
1: वाह जीजा जी वाह, जवाब नहीं आपका। अब आप कविता कामिनी का सहयोग किचन में खाना बनाने में लीजिए। तब तक मैं और दीदी ड्राइंग रूम में टीवी पर फिल्म देखते हैं।
0: हाँ देखो देखो फिल्म टीवी पर, मगर पास पड़ोस में जाकर कह दो कोई कवि कोमल आज बना रहा है रसोई।
1: ठीक है ठीक है, मैं सारे मोहल्ले में जाकर कह आती हूँ, आप अपना खाना बनाना चालू कीजिए।
0: शुरू शुरू शुरू। अरे सुनती हो मेरी रजनी, अरे सुनती हो मेरी सजनी, अरे लड़ाया हो मेरी सजनी।
1: अब क्या हो गया, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप? जरा भी चैन से बैठ नहीं पाती, कहिए।
0: बच्ची खुपिए बोलो जरा धीरे, मैं पूछ रहा था कि कहाँ रखे हैं जीरे।
1: आपने आपने फिर प्रिय कहा, मैं कह देती हूँ।
0: अच्छा मैं तुम्हें प्रिय कहूँ या फिर मैं?
1: अरे बाबा जो जी में आए वो कहिए, पर अब जाइए जल्दी से खाना बनाइए, घंटा भर हो आया और अभी कुछ हुआ नहीं। उस सफेद रंग के डिब्बे में जीरे रखे हैं।
0: अच्छा अब जाती कहाँ हो प्राण प्रिय?
1: ओफो मैं तो तंग आ गई आपकी इस बेतु की बकबक से, भगवान जाने कविता का नशा कब उतरेगा।
0: हाँ? इस कला को तुम कैसी हो नशा, एक कवि की हुई ये कैसी दुर्दशा।
1: दीदी जीजा जी पर आज कविता का भूत सवार हो गया है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि चलो पड़ोस में मिसेस सिन्हा के यहाँ बैठ कर टीवी पर फिल्म देखें। घंटे डेढ़ घंटे बाद जीजा जी जब खाना बना लेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे। क्यों?
2: हाँ
1: मजा भी आएगा।
2: हाँ ये ठीक रहेगा, चलो
1: चलो चलो।
0: अरे अरे अरे अरे अरे अरे कैसी है तुम्हारे इस किचन की चमक, नजर नहीं आता किधर है नमक नमक नमक।
1: लाल रंग के छोटे डब्बे में रखा है, जरा अंदाज से डालिएगा कहीं ज्यादा ना हो जाए। अच्छा मैं रेणु जा रहे हैं।
0: हाय

0: क्यों जी, बन गया आपका खाना?
1: आओ आओ प्रिय, खाए हम संग संग खाना और खाते खाते गाए हम कोई फिल्मी दो गाना।
0: मुझे नहीं आता कोई गाना वाना, और अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कृपया शांत रहें। अब इस कविता के चोले को उतार दीजिए।
1: मैं कवि हूँ, मर्द हूँ, बर्फ हूँ, सर्द हूँ, तड़प हूँ, दर्द हूँ, सड़क हूँ, मर्द हूँ।
0: बस बस, समझ गई आप क्या हैं। क्यों जी, आप घर में दिन भर प्रिय प्रिय की रट लगाए रहते हैं, क्या दफ्तर में भी आप इसी तरह मुझे याद करते हैं?
1: हाय, आता जब याद साहब का चेहरा, कैदी पर हो जैसे कोई पहरा, याद तेरी भीतर घुसने नहीं पाती, दरवाजे पर ठहरा हो जो चपरासी।
0: अच्छा अच्छा, अब आप खाना खाइए, आज तो आपसे बात करना भी गुनाह है, ढंग से तो बात कर ही नहीं रहे।
1: क्या कर रही हूँ,
0: ये सब्जी है, एक ही में कई तरह के स्वाद, नमक भी है और चीनी भी, खट्टा भी है और तीता भी। हे भगवान, क्या आपने किचन में रखे सारे मसालों को इसमें डाल दिया है? बस कमी है तो सिर्फ एक किरासन तेल की, दो चार बूंद टपका देते तो मजा

0: आ जाता।
1: अरे मत उड़ाओ एक टिपका यू मजाक, चुपचाप खा लो, मैंने बनाया है जो साग। गुस्ताखी माफ।
0: और ये रोटियां बनाई हैं आपने, कहीं पर कच्ची है तो कहीं पर जली हुई। कहते थे मुझे खाना बनाना आता है।
1: रोटियां देखने में है भुरभुरी, खाने में लगती है ये कुर कुर कुरकुरी।
0: और खाते ही बदन में आएगी सर सर सरसरी।
1: अरे वाह प्रिय माँ, अरे तुमने मेरे दिल में दीपक जला दिया। अरे आज मैंने जाना कि तुम भी हो कवित्री, मैं हूँ सत्यवान। हाय डार्लिंग, तुम हो मेरी सावित्री।
0: रहने दीजिए अपनी ये निगोड़ी कला अपने पास, मुझे नहीं बनना कवियत्री।
1: अरे अरे गुस्से में तुम लगती हो आग, जैसे हो मिर्ची की साग। अब घर से कवि को मर जाओ भाग, कहता है मेरे मन का काग।
0: अरे वाह वाह, आप कहाँ भागेंगे? भाग तो मैं रही हूँ, अब मुझसे नहीं खाया जाता ये खाना।
1: मत जाओ प्रिय इस तरह, तुम दिल मेरा तोड़ कर। कहता हूँ प्रिय, अरे मैं ये दोनों हाथ जोड़कर।
0: अब जैसा किया वैसा भुगत।

0: बदन में आएगी। सर सर सर सरी।
1: अरे वाह प्रिय माँ, अरे तुमने मेरे दिल में दीपक जला दिया। अरे आज मैंने जाना कि तुम भी हो कवित्री, मैं हूँ सत्यवान। हाय डार्लिंग, तुम हो मेरी सावित्री।
0: रहने दीजिए अपनी ये निगोड़ी कला अपने पास, मुझे नहीं बनना कवियत्री।
1: अरे अरे गुस्से में तुम लगती हो आग, जैसे हो मिर्ची की साग। अब घर से कवि को मर जाओ भाग, कहता है मेरे मन का काग।
0: अरे वाह वाह, आप कहाँ भागेंगे, भाग तो मैं रही हूँ। अब मुझसे नहीं खाया जाता ये खाना।
1: मत जाओ प्रिय इस तरह, तुम दिल मेरा तोड़कर, कहता हूँ प्रिय। अरे मैं ये दोनों हाथ जोड़कर।
0: अब जैसा किया वैसा भुगतिए, आप खुद खाइए अपना बनाया स्पेशल खाना।
1: प्रिय तुम छोड़ना मत खाना, समझेगा क्या ये जालिम जमाना। हाय तुमने ये ना जाना, प्रिय तुम छोड़ना मत खाना।
0: अब आप कविता गुनगुनाइए और ये खाना खाइए। आपके इस बकबक से तो मैं परेशान हो गई, मैं तो चली अब किसी अच्छे होटल में खाना खाने।
1: जाओ प्रिय जाओ, तुम होटल में खाओ और देखो कोई पिक्चर सुहाना। मैं यहाँ बैठ के अकेले गाऊंगा फिल्मी दो गाना।

ये न थी हमारी किस्मत, ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। लेखक सत्यदेव नारायण सिन्हा, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता सीताराम यादव। आकाशवाणी पटना की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है फिल्मकार और गायक विशाल भारद्वाज का जन्मदिन, जिनके इस जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं के फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं, कुछ गीत उनकी आवाज में भी।

विशाल भारद्वाज की आवाज में आप सुन रहे थे उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे पटाखा फिल्म से हमने आपको सुनवाया, गुलजार के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रलोक, और अब आपको सुनवाते हैं विशाल भारद्वाज का संगीतबद्ध किया ये अगला गीत, इश्किया फिल्म के। इस गीत में आवाजें सुखविंदर सिंह और मीका की, बोल गुलजार के।

0: इश्किया फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, सुखविंदर सिंह और मीका की आवाजें, गुलजार के बोल, विशाल भारद्वाज का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, जिसमें आज गीत सुनवा रहे हैं विशाल भारद्वाज की फिल्मों से। फिल्मकार, संगीतकार, गायक विशाल भारद्वाज का आज है जन्मदिन।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। और अंतराल में जाने से पहले हमने आपको सुनवाया था मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म से गीत, जिसमें आवाजें आपने सुनी रेखा भारद्वाज, शंकर महादेवन और मोहित चौहान की। गुजार के बोल विशाल भारद्वाज का संगीत। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: हे डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो।

सात खून माफ। इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे उषा उत्थुप और रेखा भारद्वाज की आवाजें, गुलजार के बोल विशाल भारद्वाज का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर चित्रलोक।

कमी ने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहित चौहान की आवाज, गुलजार के बोल, विशाल भारद्वाज का संगीत। और विशाल भारद्वाज के संगीत से सजा एक और गीत सुन लेते हैं जिसे लिखा गुलजार ने है, सुनिधि चौहान और क्लिंटन सरजू की आवाजें, एक तिजायन फिल्म से। सुनिए ये गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक

0: विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOC का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत

0: की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
1: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

0: नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
1: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना है।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।
3: ओए, ओए, ओए, ओए, ओए, ओए, ओए।
4: वो झरो के

झुमरू फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और किशोर कुमार का ही संगीत। कार्यक्रम आपके लिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे झुमरू फिल्म, माफ कीजिएगा, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गीत, जिसमें लता मंगेशकर की आवाज में उनके साथ और आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे

0: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे झुमरू फिल्म, माफ कीजिएगा, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गीत, जिसमें लता मंगेशकर की आवाज भी उनके साथ और आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आपके लिए विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाएं उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में ये गीत आपने सुना। गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपके लिए विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत।

जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम आपके लिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, फिल्म आन मिलो सजना।

आनमिलो सजना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और आज का ये संगीत का सफर आपने तय किया अपने दोस्त नेहा शर्मा के साथ। अब दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोर दा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोर दा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य

नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलील दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

0: बंसुरी बजा।
1: किशोरदा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, नौ दो ग्यारह और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत।

किशोरदा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।
3: जिंदगी का सफर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में

किशोरदा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: कोई लौटा दे।
1: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
2: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: हंड्रेड पॉइंट नाइन मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। रात्रि के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों के बाद आप विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत सुनेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सारी दुनिया के दांत मजबूत करे।
1: आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सबसे गहरा प्यार वो होता है जब जिसे चाहो उसे खबर ही ना हो। सबसे सुनहरे प्यार का सफर वो होता है जब कभी जिसे चाहा उसे इजहार ही न किया जाए। जिसे चाहो उसे खबर ही ना हो कि कोई प्यार करता है उससे। आत्मा से उपजा सबसे पवित्र प्यार वही होता है जब नदी के दो किनारों की तरह एक साथ दूर दूर चलते रहो, निहारते रहो, लेकिन मिलन की तमन्ना ना हो और पता ही ना हो उसे कि कोई बड़ी शिद्दत से करता है प्यार।

0: आकाश में जैसे हरा रंग घुल मिल गया है। नदी लयबद्ध होकर गुनगुना रही है। आज चिनार के पेड़ पर बैठी चिड़िया महीन महीन आवाज में कुछ नई बोली बोल रही है। पहाड़ों पर जब गिरी बर्फ तो मन उठ चला बर्फीली वादियों में। वादी में गूंजा प्यार का तराना लहरों में जैसे जादुई संगीत है।
1: छलके तेरी आंखों से

तुम्हारी तरह और कोई प्यारा नहीं लगता। तुम्हारे होने से जिंदगी के तमाम लम्हे खुशगवार हो जाते हैं। तुम्हारे इंतजार में बगीचे में गिरी पत्तियों को हथेली पर लेकर हवा में उड़ाया है कई बार। खिलते फूलों को देखकर मुस्कुराकर अपनी हथेली पर लिखा है तुम्हारा नाम। गिरी हुई पत्तियों और फूलों को बटोरकर बनाया है गलीचा और उस पर बैठकर गिनी है घड़ियां तुम्हारे आने की।

ढूंढता है संसार का वो कोना जहां सिर्फ तुम्हारा साथ हो, दिल ढूंढता है वो लम्हा जो सिर्फ तुम्हारे साथ बीते।

0: जहाँ तक है धरती आसमान का विस्तार, वहां तक प्यार का है आलम। प्यार का रंग बड़ा चटक होता है, मुश्किल है इस रंग को फीका करना। मन के झील में ठहर गया एक चेहरा, तब से पानी की सतह पर प्रेम का गुलाबी रंग झिलमिला रहा है लगातार।
1: मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता।

0: सकता मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता।
1: जीवन की इस आपाधापी में बस थोड़ी मोहलत मिल जाए जरा से प्यार के लिए, थोड़ा सा साथ मिल जाए, थोड़ी सी हो गुफ्तगु, थोड़ी सी हो नोक झोंक, थोड़ी हो छेड़छाड़, थोड़ी सी खिलाए मुस्कान, दरकार है मुस्कान की, दरकार है प्यार की, दरकार है फुर्सत के लम्हात की।
2: चलो

0: चक्रदंती सारी दुनिया के दांत मजबूत करे। हाँ,
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के सागर में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 7 तारीख तक समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।